0: Tune Kelantan FM, di mana cua.
1: Ladies and gentlemen, oh forget it, it's Bollywood.
2: मुझे खींच रही अनजानी डोर, बस तेरी ओर, बस तेरी ओर।